0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
1: देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
0: डेजर्ट सफारी,
1: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: Safo Travel, at all protected.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत

absolutely beautiful, right? तुम आ गए हो, नूर आ गया है. लता मंगेशकर और किशोर कुमार, they're behind the mic. From the 1975 classic film, Andhi. And this was, of course, your classic hit of the hour.

0: you like directions?
1: Mm-hmm.
0: Great. Exit the bedroom, pass the dog's basket, sit at the kitchen table. You have arrived.
1: Mm.
0: Enough time to move pickles. Visitors do make him frisky.
2: Some people can't get to Specsavers unaccompanied. That's why we offer home visits. Home visits from
0: Miriam's Journey.
2: Savers.
0: Down pickles.
2: Geographical restrictions apply. Find out if you're eligible online.
3: Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
6: Welcome to the jungle.
7: Film? Bilkul fake.
6: Hamare film army wali.
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
7: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
10: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
11: किस लिए फिल्म में
12: Position your business for success with Sabici Business Center. We offer flexible warehousing and light industrial units ideal for storage, workshops and growing businesses, plus serviced offices, hot desks and meeting rooms, tailored to the way you work. Enjoy flexible terms, convenient parking and half-price rent for your first month.
13: For virtual offices, business address registration and more, call 0208-799-7474. Sabici Business Center. Professional, flexible, built for business.
14: London, good news! आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे ज्यां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
16: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू इसे अकेले फेस मत करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 आज ही एक्शन ले 0208-907-2444
17: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
18: द पीपल ऑफ ब्रिटेन हैव बॉट लोड्स ऑफ नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 28.9% APR representative variable and 28.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
19: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LIKER20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: LIKER Radio.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
5: Notice the change in your hearing? Well, get a hearing check from Specsavers. Oh, not sure where to start? Well, we're very flexible. Book one online, on the phone, on your lunch break, on Saturdays, on the same day if you're lucky. Oh, you only miss the odd word. But what if the odd words you're missing are nice ones like love you or important ones like duck? Oh, too expensive, is it? All right, we like you. We'll do it for nothing. For free hearing checks... should have gone to Specsavers.
6: Every parent wants their child to grow up healthy. HPV, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV or contact your school immunisation team.
7: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit gorgeouscouture.co.uk.
9: Position your business for success with Sabici Business Centre. We offer flexible warehousing and light industrial units ideal for storage, workshops and growing businesses, plus serviced offices, hot desks and meeting rooms tailored to the way you work. Enjoy flexible terms, convenient parking and half-price rent for your first month.
10: For virtual offices, business address registration and more, call 0208 799 7474. Sabici Business Centre. Professional, flexible, built for business.
11: चलो जाइए एक नवा सफर पर
12: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
13: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
12: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
13: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
12: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
15: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
17: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
18: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर हाई स्पीड एक्शन हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स बिल्कुल अनमिसेबल अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून बी देयर
19: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज देयर्स अ चांस
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
20: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
21: सही है

0: ये बैक टू बैक फ्रॉम परम सुंदरी एंड सिंग इज किंग इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम राहत फतेह अली खान साहब एंड ऑफ कोर्स श्रेया घोषाल फोर इन अ रो व्हिच मींस टू मोर टू गो. If you've just tuned in, good morning and welcome to your mid-morning show on Laika Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: 02208907244.
1: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Welcome to the jungle.
4: फिल्म बिल्कुल फेक।
3: हमारे फिल्म आर्मी वाली और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
3: स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
3: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
3: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
5: किस लिए फिल्म में?
4: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जिंदगी वहाँ सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: काजल्स कुटुर फॉर एवरी सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस
2: डिस्कवर काजल्स कुटुर साउथहॉल द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR
1: एक्सप्लोर एक्सक्विजिट ब्राइडल वेयर ग्लैमरस पार्टी वेयर ब्यूटीफुल ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड स्टाइलिश आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन
2: प्लस लाइक अ लिसनर्स गेट 10% ऑफ ऑन ब्राइडल वेयर एंड पार्टी वेयर ओपन 7 डेज अ वीक
1: काजल्स कुटुर साउथहॉल where every occasion finds its perfect style.
2: Visit kajalskuchor.co.uk.
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
5: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
4: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
3: To open the scoring, he does!
5: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.

0: ट्रैक सुखविंदर सिंह एंड भूमि त्रिवेदी ऑन द वोकल्स उड़ी उड़ी जाए और वक्त भी उड़ उड़ के जा रहा है जय श्री लॉक्ड इन सेइंग रेडियो वाली वेज बर्गर्स फॉर डिनर नाइट फॉर डिनर टुनाइट इट्स टू हॉट टू डू शाक रोटी कंप्लीटली एग्री विद यू
1: Wally's roller coaster, only on Leica Radio.
0: Squeezing in one last big track because we need to see what's happening around the globe. The Milte Hen News Kebab. If you are taking part in the competition, remember one WhatsApp message with your full name, your email address, your telephone number, and the word husband.

0: This is Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
6: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
7: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे?
8: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं.
6: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
9: Dulhan ke liye makeup.
6: Shut up! For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
12: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 020-3773-6333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
13: Divorce या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
0: London's biggest love songs continue. The Love Sound. Leica.

0: townhouses and villas greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
0: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
0: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण.
0: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे.
2: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स.
0: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें. लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
4: The biggest Asian love songs in the capital.
5: Laika Radio.

0: biggest Asian love songs in the capital.
1: Laika Radio.
0: The Love Sound.
2: तेरी मिठी मिठी मैं तकल सुने तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा